0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोटोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अड्गुडी।

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड।
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रेसिंग टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5684 94 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए
1: मध्य पश्चिम चाइन चेक यति बेला दिउँसोको एक बजेको छ।

Buy one, get one free offer. Buy net go, buy one, get one free offer. Ma, 3 महीना को 125 Mbps internet. 2700 में खरीद कर दा. Free internet package. नया चरण को लागी gift करने मौका. सफल referral ma, आपको लागी 1 महीना free internet. Buy net, अब सब connected.

स्थित राजकोट सामुदायिक वनमा व्यापक जनसहभागिताका साथ वृहत वृक्षका प्रमुख गिल्बा राजकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह हो। हाम्रो राजकोट बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका संयुक्त आयोजनामा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न हुलक हो। कार्यक्रम हानव तंगीसरङ गाउँपालिकाका हेकुली वन तथा कृषि सहज कार्यक्रम सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल दाङ ग्रीन फाउण्डेशन नेपाल डिभिजन वन कार्यालय दाङ भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तुलसीपुर हो। ज्ञानोदय इंग्लिश बोर्डिङ स्कूल राजकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष चक्र मिलन विकका अध्यक्षता एवं दंगीसरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष समू गिरीका बरपौना उपाध्यक्ष पीमा कुमारी खड्का हो। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष तथा ग्रीन फाउण्डेशन नेपालका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेका विशिष्ट आतिथ्यमा कार्यक्रम हुन रह। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बितलक आर्थिक वर्षसम्म 41 करोड़ से बढ़ी राजस्व संकलन कै राखल। उपमहानगरपालिकाले बितलक आर्थिक वर्ष 2082-83 41 करोड़ 76 लाख 90,077 रूपया राजस्व संकलन गर्लक हो, तर यी रकम कुल लक्ष्य से कम हो। उपमहानगरपालिकाले बितलक आर्थिक वर्षसम्म 72 करोड़ 15 लाख राजस्व संकलन गर्न लक्ष्य धरल रह। दाङमा माटिक ढिस्को खसबेर पुर्कन 15 वर्षीय एक बालकको मृत्यु रहल। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार राजपुर गाउँपालिका दुई बेला स्थित दुर्गा सामुदायिक वन अभिटर ट्र्याक्टर लिएकन माटी लिएर गइलक बेला माटिको ढिस्को खस्कन बालक पुर्गिलुइट। प्रहरीका अनुसार गइलक रात करिब 9 बजे दुईजना बालक ट्र्याक्टरसँग माटी लिएर गइल रह। ऊ क्रममा 81 माटिक ढिस्को खसबेर एक बालक पुरल रह। घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ प्रहरी टोली घटनास्थल पुगन उद्धार कैकन उपचारका लागि अस्पताल पुगागिल रह, तर चिकित्सकले उहाँ मृत घोषणा गरल रह। प्रदेशले ट्र्याक्टर चालकन नियन्त्रणमा लेकन आवश्यक अनुसन्धान अगाडि बहिलक जना राखल। लमही नगरपालिकाले सामुदायिक डायलिसिस सेन्टरमा लौह डायलिसिस मेसिन जडानको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्लक जना राखल। डायलिसिस सेवा लिह आइएफए करिब 50 जना बेरामा पाला कुर्कन विश्व पर्न अवस्था रहलक। सेवा विस्तारका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिलक नगर प्रमुख जोगराज चौधरी जानकारी दिएर रोटरी क्लब लमहीको सातौ पद हस्तान्तरण तथा नयाँ कार्य समितिका शपथ ग्रहण गर्लक समारोह सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख चौधरीले डायलिसिस सेवा नागरिक जीवनसे प्रत्यक्ष जोड़िलक विषय हुलक वर्षे एकल क्षमता विस्तारमा नगरपालिका प्रतिबद्ध रहलक बटवा राख्ल। कार्यक्रम रोटरी क्लब अफ लमहीको सन 2026-27 का लाख लोकमान रिजाल का अध्यक्षतामा लौह कार्य समिति चयन गरिलक हो। नगर नवनिर्वाचित अध्यक्ष सहित पदाधिकारी तथा सदस्य हुनकलाई शपथ ग्रहण गराइल रह। निवर्तमान अध्यक्ष श्यामलाल भण्डारीको निवर्तमान अध्यक्ष रिजाल हाना पद तथा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरल रह। नगर प्रमुख चौधरी से शिक्षा स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में रोटरी क्लब से निरंतर करते अल योगदान प्रशंसनीय उल्लेख करते सामुदायिक डायलिसिस सेन्टर संचालन कैकन क्लब स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुकरणीय काम करलक बटवा राख्ल। घोराई उपमहानगरपालिका 14 बैंक रोड में रलक नेपाल बैंक लिमिटेड घोराई से आपन बैंकिंग सेवा थप विस्तार के राखल। सर्वसाधारण हन सहज हो छिटो बैंकिंग सेवा उपलब्ध करने उद्देश्य से बैंक से शनिवार से दुई स्थान में लौ एटीएम सेवा संचालन में अलग हो। लौ एटीएम घोराई उपमहानगरपालिका 15 दीपसिका रोड स्थित नापी कार्यालय अगाड़ी ओ भरतपुर स्थित पद्मोदय चोक में रलक नेपाल बैंक लिमिटेड एक्सचेंज काउंटर हन संचालन में अनलक नेपाल बैंक जना राखल। बैंकक अनुसार लौ एटीएम संचालनसँग घोराई ओ आसपासको सेवा ग्राही से नगद छिक्ना ओ एटीएम मार्फत उपलब्ध घुइना अन्य बैंकिङ सेवा आही सहज रूपमा प्राप्त गर सेक्नेबाट सेवा विस्तार से बैंकिङ पहुँच बहरल कोस्तको सेवा ग्राहीको समय ओ श्रम समेत बचत होइन विश्वास बैंकले राखल। नेपाल बैंक सेवा ग्राहीको आवश्यकता ओ बढ़्दो चाप हुन ध्यानमा धैकन आगामी दिनमा फेर सेवा विस्तार हुन निरन्तरता दिन जना राखल। यी सँग घोराईमा नेपाल बैंकक एटीएम सेवा 3 ठाउँ से प्रदान हुन हो रहल। हुइठा त आजुक थारु भाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसुन ज्याफे।

Bionet को buy one gift one free offer मा 3 महीना को 125 Mbps इंटरनेट 2700 मा खरीद गर्दा free इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल मा आफ्नो लागि 1 महीना free इंटरनेट Bionet।

0: कोकोनट चोकोनट वीटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा जो हो हम चॉइस कोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: डॉक्टर कृष्ण हरि सुवेदी द्वारा दैनिक बच्चा सम्बन्धी सम्पूर्ण चेकजाँच तथा उपचार सेवा।
1: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुपमा शर्मा द्वारा दैनिक चेकजाँच तथा उपचार सेवा।
2: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट MBBS MD डाक्टर रामेश्वर देवकोटा द्वारा भिडियो एक्सरे सेवा।
1: नोट, अत्याधुनिक सेवा सहित 500 MA को डिजिटल एक्सरे सेवा र औषधि सुपथ मूल्य में पाइन।
0: फोन बाट नाम दर्ता गर्न सकिने।
1: संपर्क दाङ मध्य पश्चिम पोलिक्लिनिक हॉस्पिटल रोड खोराही दाङ।
0: संपर्क फोन 082-5090-079, मोबाइल नंबर 98478-10-030 र 98229-54555।
3: नाक कान तथा घाटी रोग को उपचार सेवा अब सुपर अमेरिका हल घोराही दाङ में।
4: नाक कान तथा घाटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुवर्ण बुढामगर द्वारा प्रत्येक दिन बिरामी चेक जाँच भइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सम्बन्धित रोग का बिरामीले समयमै सम्पर्क गरी आफ्नो रोग को पूर्ण निदान गर्नुहोस्।
3: अन्य सेवाहरू, हाट जोड्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण तिमिल सिन्हा द्वारा दैनिक बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
5: सुगर, थाइराइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर एसएन यादव द्वारा प्रत्येक महीना को दोस्रो शुक्रवार बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
3: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दीप पोखरेल द्वारा दैनिक बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
6: प्रत्येक दिन डाक्टर नवराज केसी द्वारा बिरामीहरूको चेक जाँच तथा उपचार सेवा।